0: और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो झुकते नहीं, उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। अब इसके बाद ये कौन सी बात पर ईमान
1: लाएंगे?
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

ये लोग किस चीज की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं, क्या उस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मेखे नहीं ठहराया? और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और नींद को तुम्हारे लिए मूजिब आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्रर किया और दिन को माश का वक्त करार दिया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और आफताब का रोशन चराग बनाया और नुचड़ते बादलों से मूसलाधार में बरसाया ताकि हम उससे अनाज और नबातात पैदा करें और घने घने बाग।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम बहितरीन रिज़ल्ट हासिल वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट चमकता गॾु Going is I Biocon International Pakistan खुश खबरी के झड़ान है अब फिकर छोड़िए शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 03003 8 double 5 6 9

0: इन बाबति फैसलो असांखे न पर आवाम खे करणो आहे। मुल्क जी आबादी चवण ते वधी वई आहे। सूबा साॻिया ई चार ई आहिनि। 1972 में आबादी 7 खां 8 करोड़ हुई, हाणे 25 करोड़ आहे। कुझु सोचणो पवंदो, आबादी एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू फैसलो कंदा त अॻिते कीअं हलणो आहे। सुठी हुकमरानीअ लाइ इंतज़ामी रीसेट जी ज़रूरत आहे त थियणु घुर्जे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जी न्यूज़ ब्रीफिंग। DGISPR चयो आहे त आईन मुताबिक़ फैसला हल करे सघजनि था, अवाम जी राय वठणु घुर्जे। अवाम गवर्नेंस मां मुतमिन आहे त ठीकु, मुतमिन आहे त आईन मुताबिक़ फैसलो करे। पाकिस्तान जी सिक्योरिटी लाइ सुठी हुकमरानी ताईं अहम आहे। मसइला हल न थिया त उन जो मतिलब इहो आहे त सुठी हुकमरानी लाइ कुझु न कुझु करणो पवंदो।
1: हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें, जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। यू डोंट वांट टू टॉक, वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर विच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। यू आर नॉट द एक्चुअल स्टेक, यू आर ओनली स्टेक होल्डर इन योर ओन पर्सनल एंड इन योर ओन फैमिली फॉर्चून, नॉट इन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ये उन्हें प्रॉब्लम है, हमें क्यों नहीं अपीज किया, हमारे आगे पैरों को हाथ नहीं लगाया जाए, हमसे बात करें। मुझे उन्हें तो आदत है कि ये लेवीज की जो

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिब अमेरिका ऐं इसराइल गडि॒यल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्त थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआहिदे लाइ मिनतू कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़त्म थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाइयुनि जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातिमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजिन खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअण घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे, इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूद आहे। ईरान अमेरिका सां जंग में सहकार ते बरतानिया खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक्चीअ जो बरतानवी हम मुनसिब सां फ़ोन ते राब्तो। ईरान ते हमले में अमेरिका सां सहकार खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾेई छॾियो। अब्बास राक्ची चयो त ईरान ख़िलाफ़ हमलनि में सहकार जा बरतानिया खे नतीजा भोगणा पवंदा। ओमान वेझो आबनाह हुर्मुज़ में आयल टैंकर ते हमलो। इंजण खे नुक़सान पहुचण बाद बहरी टैंकर सफ़र रोके छॾियो। बरतानवी मेरी टाइम हमले जी तसदीक करे छॾी। टंडो आदम में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जे सदर जी बाज़ियाबी लाइ अवामी एक्शन कमेटी पारां शटरबंद हड़ताल मुज़ाहिरो बि कयो वियो। अगवाणनि मूजिब 10 ॾींहं अॻु शादादपुर मां पुरसरार नमूने शकील बलोच गुम थी वियो हो। संदसि अगवा जो शक आहे। खेस हिन वक़्त ताईं बाज़ियाब नाहे करायो वियो, बाज़ियाब करायो वञे।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-180-0003।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
3: यार आजकल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836।
9: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ए औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लए 0301-9196-851।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दादरी से वजीर आजम बने थे तो फिर आप याद करें, यहां पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था, ये बातें भी फिर होती हैं।
2: वजीर आजम के सलाहकार राणा सनावला जो पीपल्स पार्टी के वार शहीद जुल्फकार भुट्टो के मुल्क तोड़े वजीर आजम थियण जो तानो दई छड़ियो। घरू वजीर मोहसिन नकवी ते भी तनकीद। मुजफ्फराबाद में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सनावला चयो ते जेकरे तव्हां नवाज शरीफ के चवंदा त सदाई धांधली करे वजीर आजम थियो आहे त पोइ हिते ही ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क तोड़े पहिरियों भेरो वजीर आजम थियो। वजीर आजम के वोटन के अवां फारम 47 जो सडींदा त बुधायो सदर के मिलियल वोट कहिड़े फारम जा आहिनि। जरदारी साहब जो बियो फर्जन चई रहियो आहे त सिस्टम खत्म थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज के ईरान ते वरन हमलन जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआहिदे लाइ मिनतूं कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़त्म थी चुको, ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातिमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ही चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअण घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे, इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूद आहे। ईरान अमेरिका सां जंग में सहकार ते बरतानिया खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची जो बरतानवी हम मुनसिब सां फोन ते राब्तो। ईरान ते हमले में अमेरिका सां सहकार खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾेई छॾियो। अब्बास इराकची चयो त ईरान ख़िलाफ़ हमलनि में सहकार जा बरतानिया खे नतीजा भोगणा पवंदा। कुमान वेझो आबनहर मुज़ में ऑयल टैंकर ते हमलो, इंजन खे नुक़सान पहुचण बाद बैरी टैंकर सफ़र रोके छॾियो। बरतानवी मेरी टाइम हमले जी तस्दीक करे छॾी। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स जे क़याम ऐं सिंध जे विरांगे बाबति नए सियासी मोहम ते गणती ज़ाहिर करे छॾी। सिंध जे सलामती एतिहाद रेड लाइन करार साना अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जे विरांगे तारीख़ी सरहदनि खे तब्दील करण या सूबे में इंतज़ामी यूनिट क़ाइम करण बाबति सियासी मोहम क़बूलण जोगो नाहे। हैदराबाद जे हाला नाके वारे इलाइक़े भरिसां क़ाइम क़दीमी ॻोठ सूमार मीर बार जे रहवासियुनि जो ॻोठ जो रस्तो बंदि करण ख़िलाफ़ एहतजाज। मुज़ाहिरीन क़ौमी शाहराह ते धरणो हणी रोड बंदि करे छॾियो। ॻोठाणनि मूजिबि रस्तो बंदि करण ॻोठ ख़िलाफ़ साज़िश आहे। रस्तो न खोलियो वियो त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।

0: मलकानी शरीफ में पुलिस के घर से चढ़ाई खिलाफ शहरन जो एहतजाज प्राइमरी उस्ताद खालिद हुसैन लगारी के घर से चढ़ाई खिलाफ एहतजाज किया वो मुजाहिरन तो पुलिस ए फूड खाते बिना जवाज उस्ताद के घर से चढ़ाई कई है जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: मेरा फ्रेंड
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था, अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के? जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
2: वजीर आजम के सलाहकार राणा सनावला जो पीपल्स पार्टी के वार शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के बुल्क टोड़े वजीर आजम थियण जो तानो डेई छड़ियो। घरू वजीर मोहसिन नकवी ते भी तनकीद। मुजफ्फराबाद में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सनावला चयो त जेकरे तव्हां नवाज शरीफ के चवंदा त सदाई धांधली करे वजीर आजम थियो आहे त पो हिते ही गाल भी थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वजीर आजम थियो हो। वजीर आजम के वोटन के अवां फारम 47 जो सदींदा त बुधायो सदर के मिलियल वोट कहड़े फारम जा आहिन। जरदारी साहब जो बियो फर्जन चई रहो आहे त सिस्टम खराब थी चुको आहे, अगते न वधी रहो आहे, इक्तदार जा मजा वठण बाद ओचतो खेन सिस्टम खराब लगण लगो आहे, जेका अजीब गाल आहे।

कश्मीर के पाकिस्तानी शहरन जड़ा हक दियारण चाहें तो कश्मीर के पानी बिजली जमीन ए बेलन ते पेरों हक कश्मीर की अवाम जो है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो कश्मीर के पानी से समूरो पाकिस्तान रोशन थिए तो कश्मीर जा घर अस्पतालों स्कूलन के भी फायदो मिलन घुर्जे। कश्मीर के हर मनसूबे जो हिसाब कश्मीर के सामू थे घुर्जे खेन वाजिब हिस्सों मिलन घुर्जे। कश्मीरन के कश्मीर में मिल्कियत जो हक दियारण चाहें तो।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज के ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआहिदे लाइ मिनतूं कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअण घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे, इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूद आहे। ईरान अमेरिका सां जंग में सहकार ते बरतानिया खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकतीअ जो बरतानवी हमनसिब सां फोन ते राब्तो। ईरान ते हमले में अमेरिका सां सहकार खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾेई छॾियो। अब्बास इराकती चयो त ईरान ख़िलाफ़ हमलनि में सहकार जा बरतानिया खे नतीजा भोगणा पवंदा। ओमान वेझो आबनार मुज़ में आयल टैंकर ते हमलो। इंजन खे नुक़सान पहुचण बाद बहरी टैंकर सफ़र रोके छॾियो। बरतानवी मैरीटाइम हमले जी तसदीक करे छॾी। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट जी क़याम ऐं सिंध जे विरांगे बाबति नई सियासी मुहिम ते गणती ज़ाहिर करे छॾी। सिंध जे सलामती ऐं एतिहाद रेड लाइन करार साना अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जे विरांगे तारीख़ी सरहदनि खे तब्दील करण या सूबे में इंतज़ामी यूनिट क़ाइमु करण बाबति सियासी मुहिम क़बूलण जोॻो नाहे। लाड़काणे वेझो ॿिनि भाइरनि समेत टे नींगर पाणीअ जे खॾ में ॿुॾी फोत। ॻोठ में पेर तिरकण सबबि झांगारा में 5 सालनि जो मोहम्मद हसीब, 6 सालनि जो सईद ऐं संदसि भाउ 3 सालनि जो रिज़वान कलोड़ो पेर तिरकण सबबि पाणी जे खॾ में किरी ॿुॾी फोत थी विया। वारसनि मूजिबि नींगर रोंबे ते वयल माण्हुनि खे मानी ॾेई वापसि ॻोठ अची रहिया हुआ त रस्ते में पेर तिरकण सबबि पाणी जे खॾ में किरी फोत थिया आहिनि। टिनि नींगरनि जा लाश घर पहुचण ते अंबड़ियुनि खे दौरा, ॻोठ में सोग छायल आहे।

हैदराबाद के हाला नाके वे इलाके भरसा कायम कदीमी गोठ सुमार मीहबर के रहवासियों को गोठ जो रस्तो बंद करण खिलाफ एहतजाज मुजाहरीन कौमी शाहरा से धरणो हणी रोड बंद कर छो गोठान मूजिब रस्तो बंद करण गोठ खिलाफ साजिश है रस्तो न खोलो वो तो एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। खरड़ो भरसा दमवाह में मुबैना तौर औरत बुढ़ी फोत थी वही है लाश हथ अची वो है गोठ दरिया खान बालादी के रहवासण खुर्शीदा जाल याकूब बालादी मुबैना तौर दमवाह में बुढ़ी फोत थी है कुछ कलाकन की गोल्हा बाद औरत जो लाश हथ आयो है पुलिस मौजूद फोती औरत चार बारन की माओ है जांच जारी है।

0: मलकानी शरीफ में पुलिस जे घर ते चढ़ाई खिलाफ शहरन जो एहतजाज प्राइमरी उस्ताद खालिद हुसैन लगारी जे घर ते चढ़ाई खिलाफ एहतजाज कयो वयो। मुजाहिरीन जो तो पुलिस ए फूड खाते बिना जवाज उस्ताद जे घर ते चढ़ाई कई है, जिम्मेवारन खिलाफ कार्रवाई कई वे। रियासती वेझो मुबैना तौर पुलिस के डप खां रोड़ी केनाल में टपो डींदर नौजवान जो लाश हथ 20 साल के नौजवान नादिर कलोड़े जो लाश 18 कलाक बाद मिलो। फोती नौजवान के भाव मोहकिम कलोड़ो इल्जाम हयो तो संदस भाव के रियासती पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कई, जै दौरान हु जान बचाण लाय रोड़ी केनाल में लही वयो ए तेज वेकरे में बुडी फोत थियो आहे। जिम्मेवार अहलकारन खिलाफ कार्रवाई कई वे। पुलिस फोती नौजवान के वारसन के इल्जाम के रद्द कर छो। टंडो आदम में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर की बाजियाबी लाए अवामी एक्शन कमेटी पारा शटरबंद हड़ताल मुजाहरो भी किया वो। अगवाण मूजिब 10 डी अग शादादपुर मापुर इसरार नमूने शकील बलोच गुम थी वो हो। संदस अगवा जो शक है, खेस इन वक्त तीन बाजियाब ना कराया वो, बाजियाब कराया वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
8: It's 1:15 PM.
9: This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, फ्री लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर, 03003385569।
7: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

पूछा जा रहा है। अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आजकल मैंने ये चीज बड़ी नोटिस करी है कि मुझे मेरे जो आसपास लोग हैं ना वो ये बड़ा कह रहे हैं कि भाई काश हम अपने बचपन में चले जाते, बचपन को वो आजकल बड़ा याद कर रहे हैं, या फिर देखा जाए तो बचपन की यादें कुछ वाकई ऐसी यादें होती है जिन्हें अगर हम भूलना भी चाहें तो शायद भूल नहीं पाते। कुछ लोगों का बचपन अच्छा होता है लेकिन कुछ लोगों का अच्छा नहीं भी होता, ये भी चीज है। लेकिन चले इन बातों को थोड़ा साइड पे रखते हैं, मैं सवाल जो आप लोगों से पूछूंगी वो कुछ ऐसे

0: मनीष एंटी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना है। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये तीनों काम लाजमी किया करें, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डाडो जरूरी है बाबा, डाडो जरूरी। ओके, तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर आपको मौका मिल रहा हो, अगर आप फर्ज के लिए ऐसा हो जाए कि आप अपने बचपन में चले जाएं, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे वो भी बताइए। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे हैं तो मुझे बताइए, आपने कौन सा प्रोडक्ट इंतकाब कर लिया है, कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आप सोच रहे हैं कि भाई जान हम लगाएंगे, तो भाई जान लगाइए ना, किसने मना किया, जल्दी से लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। इसके साथ साथ आदल हुसैन हमारे साथ माजूद थी, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। ठीक कहते हैं कि बिन किस्मन जा माणू भली केतरो भी अरूज ते पहुचन पर कडें भी इज्जत इज्जतदार नथा थी सघन, हिकड़ो पाण खे ज़ोरी मोतबर सॼाईंदड़ ऐं ॿियो नियत जा पली त हाओ सही आयो सही। सूफ़िया ने हमारे साथ माजूद थी, वालेकुम अस्सलाम, कहती कैसी आ मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। और हैप्पी कहती है सलाम माई स्वीट आरजे सिद्रा, आप कैसी है, तबियत कैसी है, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है। मीर तारिक बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, मीर तारिक बलोच लाड़काना खां जो प्रोग्राम बुधन पया तो मोहब्बतों प्यारे भाजो। और ये हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम आपी सिद्रा, क्या हाल है आपके, अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसा मुस्कुराता रखे। रुखसार मेरी फ्रॉम मीरपुर खास, रुखसार आपको वेलकम कहा जाता है। सूफियान भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू। अच्छा अखलाक भाई आ चुके, अखलाक भाई वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम। पोस्ट को लाइक और शेयर करें जरा। और अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भेण सिद्रा, आज मुझे जन्म दियारो आहे, सो जिमिनी के बुधायो सी तही न्यापो मोकलियो आहे। प्यारा अनवर अली, तवा के तुझे जन्म दिन जो दिली मुबारक हो, दुआ आहे तही नौ साल तवा जे जिंदगी में बेशुमार कामयाबियों, सुठी सेहत आई खुशियों वठी अचे। तवा जी जिमिनी एडी सुठी सिंधी गालाई दिया, सही तो कुंदी गालाई। चलो सही आ सही आ, तुम्हें हैप्पी बर्थडे हो जे बाबा, असा हैप्पी बर्थडे चवंदास। तुम्हारे लिए हमने गानड़ो शानड़ो भी हलाइंदासीं, तो थोड़ो सबर कयो तुम्हें, ठीक है। तुम व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल भी कर सको था। हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अदी सिद्रा, हाँ जी शो भलो आ, सो तवा के चौंधा भली करे आया। और हमारे साथ मोहम्मद ताहिर लुंड भाई, आपको भी वेलकम एंड खुशामदीद। नजीर खोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, भाईजान आप क्या कहते हैं, लिखते हैं इंसान खुद को आईने में वही दिखाता है जो देखना चाहता है, ना कि वो जो हकीकत में है। अगर अंदाज अंदर खराबी हो तो तारीफ दिखावा और झूठा हुस्न किसी काम का नहीं होता। हाँ बाबा सही था। और हमारे साथ ही जी किशोर भाई कहते हैं एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, दुनिया का कोई भी शख्स हमें तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकता। सलाम अदा हाजिर स्मार्ट हाजिरा एतबार संगठन, एतबार मानू या फिर हो एतबार जो असली हूँ है, सो तवा के चौदह भली कर आया एतबार संगठन। और ऐसे ही आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए जी, बताइए कौन कौन कहां कहां से हमारे साथ मौजूद है, टॉपिक को फॉलो कीजिएगा और हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ यहां पर टाइम हो जाता है, हम जरा जाएंगे जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, बस बैठे रहिएगा हमारे साथ, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: FM 88. अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream.

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-96-8051
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपका हमारा साथ क्योंकि पूरी पूरी 3 बजे तक का है। और मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया, यानी कि प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि आप मुझे बता रहे हैं अगर फर्ज कर लें आपको आपका बचपन वापस मिल जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सोचते हैं कि भाई काश हमें हमारा बचपन मिल जाए, तो हमने तो ये करना है, हमारी ये चीज अधूरी रह गई थी तो उसको पूरा करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हम बचपन में छोड़ कर आ चुके हैं, और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो उन तमाम तर चीजों का जो होता है ना कोई भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ के अंदर नहीं होता। हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस हमने जो एंजॉय करना था, जिंदगी अच्छी गुजरी थी वो बचपन में गुजरी थी, बाकी तो खैर जिंदगी है जो जिए जा रहे हैं। ऐसे के साथ साथ आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस बिल्कुल जी हमें मिलते जा रहे हैं, शामली प्रोग्राम रखे जाएंगे। और उसके अलावा पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा आपने लाइक और शेयर करना है, ठीक है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। मैं सर आपको बताने लगी हूँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम जरा बात करने वाले, क्योंकि आप लोगों को इस चीज के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि जब आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की खूबसूरती पर कितना अच्छा असर आता है। तो अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपके लिए एक बहुत अच्छी क्रीम साबित होने वाली है। बहुत से लोग जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं, आपके चेहरे पर रिंकल्स काफी ज्यादा आ चुके हैं, आपके चेहरे पर जो है ना रंगत का काफी ज्यादा मसला है, क्योंकि आप पहले तो गोरे होते थे लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा डल होना स्टार्ट हो चुकी है, तो आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है ना आप ऑल स्किन टाइप के लिए है, आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हजरात खवातीन हर कोई व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम से फायदा उठा सकता है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो कि आपको आराम से हर जगह मिल रही है, अगर नहीं भी मिल रही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं अवेलेबल तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अवेलेबल कराने वाले हैं। तो बिल्कुल जनाब व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो है, एलोवेरा है और मिल्क है, ये तमाम चीजें मिलकर ही आप लोगों की स्किन को जो है ना वो हेल्दी बनाती है, आपकी स्किन का ख्याल रखते हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाते साथ आपकी स्किन जो है वो रिफ्रेश हो जाती है और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है और आपको एहसास होता है कि आप वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइटिश का ब्यूटी सोप मिल रहा है, व्हाइटिश का फेस वॉश मिल रहा है और उसके अलावा डॉक्टर सिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है और व्हाइट एज लवली क्रीम है। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ये चीज बता दे चलूं, अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये एक नाइट क्रीम है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन सोप अगर आप कोई भी अच्छा सा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइट एज का ब्यूटी सोप अवेलेबल है और साथ ही साथ आपको व्हाइट एज में जो है ना वो फेस वॉश भी मिल रहा है। तो फेस वॉश भी अगर आप लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना वो विटामिन सी से तैयार किया गया है, जो कि आपके चेहरे पर अगर विटामिन सी की कमी होगी ना तो उसका भी पूरा इंतजाम है जनाब। और उसके अलावा व्हाइटिश फेस वॉश के अंदर विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी ऐड की गई है और उसके अलावा ये इतना क्रीमी फेस वॉश है। तो जनाब आप जरूर अगर कोई अच्छा सा फेस वॉश और अच्छा सा सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश फेस वॉश और व्हाइटिश का जो सोप है वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए व्हाइटिश का डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब भी अवेलेबल है मार्केट में। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते चले। तो व्हाइटिश का ये डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है, अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब कहकर इसे परचेज कर सकते हैं, जो कि मेडिकल डेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि फुल जड़ी बूटियों से इसे तैयार किया गया है। ये जनाब काम ये करता है कि आपके चेहरे पर जो एकनी होती है ना, जिद्दी एकनी या फिर एकनी के निशानात, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई ऐसा निशान बचपन से लेकर आप घूम रहे हैं कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता जो कि हम इस्तेमाल करें तो हमारे चेहरे पर ये निशानात हो, ये जितने भी मार्क्स आ जाते हैं या फिर कोई चोट का निशान भी अगर आपके स्किन के ऊपर मौजूद है तो वो तमाम हट जाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब आप नाम लेकर तलब कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है और ये पर्सनली मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि भाई मेरी भी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, मेरे चेहरे पर भी एकनी जो है ना वो आते हैं तो फिर जाने का नाम नहीं लेते, अगर एकनी एक मरतबा आ गया होता है ना तो वो अपना बहुत एक जिद्दी सा निशान भी छोड़कर जाता है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब जो कि आपके चेहरे के एकनी का भी खात्मा करता है, आपके चेहरे पर जो निशानात है उनका भी खात्मा करता है और कुल मिलाकर बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट देता है, आपकी स्किन बेदाग हो जाती है, क्लियर हो जाती है और परफेक्ट आपको हसन मिल जाता है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब
آپ استعمال کر کے دیکھیے, بہت اچھی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. لگانے کے طریقہ کار بالکل یہ ہے کہ آپ صبح کو بھی لگائیں گے اور رات کو بھی لگائیں گے, یعنی کہ دو مرتبہ لگائیے. لگانے سے پہلے اپنا فیس واش لازمی کیجیے گا اور اچھے سے اپنے ہاتھوں کو بھی کلین کیجیے گا, کیونکہ اچھے اور دھلے ہوئے ہاتھ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ جو ہوتے ہیں نا وہ صاف کلین ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو ہے نا یہ بار بار آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اس سے بھی ایک نہیں بنتے ہیں, تو آپ بار بار فیس پر ہاتھ نہیں لگایا کریں. اگر آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ کلین ہونا چاہیے, اچھے سے آپ دھوئیں اپنے ہاتھ کو کلین کریں, اس کے بعد اپنے چہرے پر جو ہے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کریں. یہ جی تمام وہ پروڈکٹ ہیں جو کہ آل اسکن کے مطابق تیار ہیں اور نیچرل اجزاء سے تیار کیے گئے ہیں. آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی اس کے اندر ایسا نقصان دہ اجزاء نہیں ایڈ ہے کہ آپ لوگوں کی اسکن کو نقصان پہنچائیں گے. بہت اچھے, بہت ہی سوبر کوالٹی کے پروڈکٹس ہیں, تو آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ملنے کی صورت میں آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر اگر اویلیبل ابھی تک نہیں ہوئے ہیں تو نہیں مل رہے, تو اس کے لیے آپ کو نمبر بتاتے ہیں جس کے اوپر آپ رابطہ کریے, اپنی قریبی جنرل سٹورز پر یہ تمام وائٹ ایج کے پروڈکٹس کو اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو نمبر سے ذرا نوٹ کرتے جائیے. اوکے جناب, 0233-27-38-4309 اور دوسرا نمبر ہے 0312-50-25907 0312-50-25907 یہ نمبر ہیں جو کہ آپ کی آسانی کے لیے ہیں. بالکل جی, آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر جا کے یہ تمام پروڈکٹ جو ہے نا وہ اویلیبل کرا سکتے ہیں. ان کو بولیے بھائی صاحب یہ وائٹ ایج کے تمام پروڈکٹس آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر ملنی چاہیے, تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. تو جلدی جلدی سے آپ اویلیبل کرائیے, استعمال کیجیے, کیونکہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس آپ کے خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. استعمال کیجیے اور خوبصورتیاں حاصل کیجیے. تو ذرا ہم یہاں پر گانے بھی سنتے جائیں گے. میں نے یہ گانے لگائے ہیں ذرا لسٹ میں, تو ہم ساتھ ساتھ یہ گانے بھی سنیں گے. اج مجھے دل سے تو بس ہی وارو گانو بدھوں تھا, چھو تا پرانا گانا بدھنے میں بھی پینچو مزو آئے. سو یہ تمام خوبصورت گانو آئے جے کو اچھو تا ملی کرے انجوائے کیوں تھا. یہ تمام جا میسیجز آئے ہیں وہ بھی پڑھی ویٹھوں.

बिल्कुल सी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. बताइए कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं. नियाज हुसैन मलिक भाई हमारे साथ है. नियाज हुसैन मलिक भाई क्या कहते हैं? हेलो जी, हेलो. और अली मुर्तजा आ चुके हैं. सलाम, गुड आफ्टरनून. अच्छा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताएं. अली मुर्तजा आप कैसे हैं? और मूसा कोरी कहती है सलाम अलैकुम. जी वालेकुम सलाम. हजार भाई कहते हैं हम भी आपके साथ साथ हैं. शो लाजवाब, बेहतरीन, जबरदस्त. थैंक यू हजार भाई. अच्छा, ना खाला हजार भाई कहते हैं सिस्टर मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम. आपकी तबीयत कैसी है? हम सब ठीक हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह. ठीक रहिए और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं. बराए पूछा तांगा की आयो क्योंकि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा. अच्छा, ऐसे नरबानी हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम इनमुल्ला सलामत कहते ओ माय फेवरेट मैडम मुस्कान लाड़कना की पहचान कैसी आप और आपकी तबीयत कैसी है? माँ भी बाबा सफा भली आया काम बताया की आयो. अखलाक भाई कहते हैं कि टॉपिक आंसर बचपन वापस न बाबा न वरी मयू चारणी पवंदी मन तक मयू चाराईंदा हुआ.

मूंखे लॻंदो आहे इहे सिर्फ़ असां सां पर न बाबा सभु वता पिया आहिनि और न खां अलावा अच्छा मीर तारिक बलोच के थे मीर तारिक बलोच लाड़काना खां मेहरबानी करी असां के सरमन सिंधी जो सॉन्ग बुधाए जो बिल्कुल बिल्कुल मां कोशिश कयां थी तांजी पसंद जा गाना हलाइंदासी और मूसा कोरी भाई के थे अदी क्रीम कारे के अच्छो करे थी बिल्कुल बाबा करे थी अच्छो करे छॾींदी सफ़ा चिमकाए छॾींदी तव्हांजे चेहरनि खे सो तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसजो उहे गाना जेके असां बचपन में ॿुधंदासीं बचपन में असां इलाही डिस्को सॉन्ग्स हूंदा

आईटी जो कड़ो प्रोडक्ट लगायो पया यो भी तमोके बुधाईंदा हलो नी। अच्छा किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में अपने बचपन की वो हसीन दिन रोज फील करता हूँ। 8, 9, और 10 क्लास के स्कूल के वो दिन जब मेरी छुट्टी होती थी तब अपनी बुक बेड पर फेंक कर उसके स्कूल की गेट पर खड़ा हो जाता था। या भाभी की खबर आगा भी बुधाया थी कुटकी खा रहा आगे ये न सुधर रहता हूँ। अच्छा असदुल्ला अब्बास कहते हाय आई लाइक यू शो थैंक यू। वासु भाई आ चुके हैं हेलो वासु भाई। एसन कहते हैं वैसे अज अच्छा चौथा आज आवाज क्लियर न थो अच्छी बियो एफएम गडजी वयो वा अवां सा भाई गडो हलन थियो ये छो यो छा

बिल्कुल सुना प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नश किया जा रहा है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, दोनों ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जनाब। आप कौन से इस्तेमाल करेंगी या फिर कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ व्हाइट एज लवली क्रीम के बारे में भी आप लोगों को बताएं, जो कि बहुत ज्यादा एक जरूरी और बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में आप लोगों को मैं जरा बताती चलूं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस क्रीम में वो क्रीमें होती हैं जिन्हें आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मेकअप के तौर पर भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई काम काज कर रहे हैं तब भी आप व्हाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल करके बस जाएंगे, चुटकियों में रेडी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर आप खवातीन हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मियों में भाई हमसे मेकअप नहीं यूज किया जाता, मेकअप नहीं लगा पाते, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का थोड़ा सा मिकदार लेकर अपने चेहरे पर अप्लाई कर देंगे, ये चुटकियों में आपको रेडी कर देती है। और व्हाइट एज लवली क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये रेडिएंट अल्ट्रा विटामिंस का फार्मूला है जिसके अंदर भाई साहब 3 विटामिंस के कैप्सूल ऐड किए गए हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि आप लोगों को खूबसूरती मिले और खूबसूरती के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे। क्योंकि अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाकर बाहर जाते हैं कोई काम काज से, तो आप लोगों की स्किन पर ये जो सूरज के ये खतरनाक असरात आते हैं ना, उनसे भी आपकी स्किन की जो है ना वो बचत होती रहे। तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ इसलिए कि आपको खूबसूरती चाहिए बल्कि इसलिए कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फेयरनेस क्रीम है, इसे बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मर्द हज़रात ख़वातीन ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इसी के साथ साथ मज़े की बात बताऊं, बिल्कुल जी व्हाइट एज लवली क्रीम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में कभी भी, यानी कि सुबह को लगाएं, दोपहर को, रात को, जब आपका दिल करे तब लगाइए, बस आप चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी और आप हसीन हो चुके होंगे।

हमदर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम कहती माय मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी, हम कैसी है, वेलकम टू शो। आपको भी वेलकम कहा जाता है माय स्वीटी। अच्छा सालार खान हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहती, क्या हाल है जी। मैं सालार खान फ्रॉम कोटड़ी। सालार भाई आपको वेलकम कहा जाता है। कहते मैं कोटड़ी से शामिल हुआ हूँ, FB पर शो सुन रहा हूँ, भाईजान आपको वेलकम कहते हैं। और उसके अलावा दर्दे दिल कहती है कि मेरी दुआ है आपकी, मुबारक आंखों के सब ख्वाब हकीकत ठहरे। आमीन आमीन। वैसे मैं ख्वाब घट नजर नहीं आया। कहती है मैं भी आ गई शो में भागते भागते। अरे भाई चलो बेरो बेरो साफ ट्यो अच्छा। नसरुल्ला भाई कहते हैं केड़ो प्यारे सां थी बुधाए कहानी। मुखे भी लगे ना मैं प्यार से गल ही नहीं आया पर यो सिर्फ तमा लाए। वैसे मैं बड़ी कलेशी हो

अच्छा यहाँ बात आए किशोर भा बिल्कुल ऐसा ओरिजिनल न था हलाए सकूं ऐसा कॉपी था हलाए सकूं था यस शातर माइंड अच्छा हैप्पी कहती अगर आज आज मुझे मेरा बचपन मिल जाए तो मैं सबसे पहले क्या करेंगी 6, 7 और 8 के दिन याद करूंगी क्योंकि ये वो दिन है जब मैं और मेरी फ्रेंड्स बहुत मस्ती करती थी और मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत तंग करती थी ये टॉपिक आंसर ओके ओके

हजार भाई कहते हैं बचपन अच्छा था, अभी तो बस यादें हैं। हाँ ना, लुबी कहती है जी जी खेड़ा, बस अब रोज शामिल होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। ॿियो ॿुधाए किथे पई रसी वसी? ऐं उन खां अलावा माइटी जो कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पिया? ऐं उन खां अलावा तव्हांजे अर्ज़ी भुट्टो में मिलंदा कोन? कहिड़े कहिड़े जनरल स्टोर से अवेलेबल थिया आहिनि, किथे किथे कोन था मिलनि? इहो बि ॿुधाइजो, जीअं तव्हांखे ॿुधायो वञे त बाबा तव्हां कीअं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से माइटी जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सघो था। सो हाणे त टाइम थियो आहे बाबा वठूं था न्यूज़ ब्रेक, उन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा। वापसी जल्दी तव्हांजी मोटींदासीं, तव्हां कारी न वञो, इते वेठा हुजो। मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग YTH & D Skin Beauty Show, sponsored by YTH Beauty Products and D Skin Beauty Products. लगाएं आप भी खूबसूरत हो जाएंगे।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।

पार्टी वट न पर असेंबलीन वट आहिन। सिंध जो अवाम चूंडियल नुमाइंदा नओ सूबो नथा चाहिन। मोहसिन नकवी भले जेको चवे संदस ॻाल्हि मञण जा पाबंद न आहियूं।

0: नवां सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहिनि। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं चार सूबनि वारे सिस्टम सबबि वसीला घटिजी विया आहिनि। एम क्यू एम अॻवान ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बद इंतिज़ामी सबबि बे मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज खे ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआहिदे लाइ मिनतूं कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजियुनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअणु घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे। इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूदु आहे। ईरान अमेरिका सां जंग में सहकार ते बरतानिया खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची जो बरतानवी हमनसिब सां फोन ते राब्तो। ईरान ते हमले में अमेरिका सां सहकार खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾेई छॾियो। अब्बास इराकची चयो त ईरान ख़िलाफ़ हमलनि में सहकार जा बरतानिया खे नतीजा भोगणा पवंदा। उमान वेझो आबनाह हुर्मुज़ में आयल टैंकर ते हमलो। इंजन खे नुक़सान पहुचण बाद बहरी टैंकर सफ़र रोके छॾियो। बरतानवी मेरी टाइम हमले जी तसदीक करे छॾी। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम जी हुकूमत ते तनक़ीद। 7 अगस्त ते समूरे मुल्क में एहतजाज जो ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज़ नईम चयो त हुकूमत रोज़ पेट्रोल महांगो करे अवाम जो कतले आम करे रही आहे। बिजली समेत खाद खुराक जूं शयूं बि महांगियूं आहिनि। 7 अगस्त ते एहतजाज कयो वेंदो। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स जे क़याम ऐं सिंध जे विरांगे बाबति नई सियासी मुहिम ते ॻणिती ज़ाहिर करे छॾी। सिंध जे सलामती ऐं इतिहाद रेड लाइन करार साना अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जे विरांगे तारीख़ी सरहदनि खे तब्दील करण या सूबे में इंतिज़ामी यूनिट क़ाइमु करण बाबति सियासी मुहिम क़बूलण जोॻो नाहे। लाड़काणे वेझो ॿिनि भाइरनि समेत टे नींगर पाणी जे खॾ में ॿुॾी फोत थी विया। ॻोठ पीर झांगारा में 5 सालनि जो मोहम्मद हसीब, 6 सालनि जो सैयद ऐं संदसि भाउ, 3 सालनि जो रिज़वान कलोड़ो पेर तिरकण सबबि पाणी जे खॾ में किरी ॿुॾी फोत थिया आहिनि। वारसनि मूजिब नींगर रोंबे ते वयल माण्हुनि खे मानी ॾेई वापसि ॻोठ अची रहिया हुआ त रस्ते में पेर तिरकण सबबि पाणी जे खॾ में किरी फोत थिया आहिनि। 3 नींगरनि जा लाश घर पहुचण ते अमड़ियुनि खे दौरा। हैदराबाद जे हाला नाके वारे इलाइक़े भरिसां क़ाइमु क़दीमी ॻोठ सुमार मीरबहर जे रहवासियुनि जो ॻोठ जो रस्तो बंदि करण ख़िलाफ़ एहतजाज। मुज़ाहिरीन क़ौमी शाहरा ते धरणो हणी रोड बंदि करे छॾियो। ॻोठाणनि मूजिबि रस्तो बंदि करण ॻोठ ख़िलाफ़ साज़िश आहे। रस्तो न खोलियो वियो त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। शिकारपुर में 10 सालनि जी नींगरीअ सां घर में ज़्यादती इस्पताल दाख़िल। डॉक्टरनि नींगरीअ सां ज़्यादती जी तसदीक करे छॾी। ठारूपुर मोहले में 10 सालनि जी नींगरी खे जवाबदार घर में अकेलो ॾिसी ज़्यादतीअ जो निशानो बणायो। ज़्यादती जो निशानो बणियल नींगरीअ जे वालिद चयो आहे त धीअ खे 1000 खान सूमरो ज़्यादतीअ जो निशानो बणायो आहे। मलकाणी शरीफ़ में पुलिस जे घर ते चढ़ाई ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज। प्राइमरी उस्ताद ख़ालिद हुसैन लगारी जे घर ते चढ़ाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन चयो त पुलिस ऐं फूड खाते बिना जवाज़ उस्ताद जे घर ते चढ़ाई कई आहे। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। ग्रिया सिटी वेझो मुबैना तौर पुलिस के डप का रोड़ी केनाल में टपो डींदड़ नौजवान जो लाश हथ 20 साल के नौजवान नादिर कलोड़े जो लाश 18 कलाकन बाद मिलो। फोती नौजवान के भाव मोकिम कलोड़ो इल्जाम आयो तो संदस भाव के ग्रिया सिटी पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कई जै दौरान हू जान बचाण लाय रोड़ी केनाल में लही वो तेज वेकरन में बुढ़ी फोत थो है। जिम्मेवार अहलकार खिलाफ कार्रवाई कई वे पुलिस फोती नौजवान के वारसन के इल्जाम के रद्द कर छो।
1: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460-1000।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए FM 94।
5: It's 2:15 PM.
6: This time check is brought to you by
7: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखे मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं। आप हमें मैसेज कर रहे हैं 8881 पर या फिर आप हमें कमेंट कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। सही है जी, तो शामिल प्रोग्राम होते जाइए और यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं फर्स्टली, अगर आप लोगों को आपका बचपन वापस मिल रहा हो, आप अपने बचपन में वापस जाना चाहते हैं या फिर आप वापस चले जाएं, तो आप पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने बचपन में जाकर क्या करने वाले हैं? इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं तो 8881 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए। फेसबुक वाली पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। ओके जी, आप जरा शामिल प्रोग्राम हो जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट साबित होगा। अगर आप भी दी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बताएंगे दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक इसे तैयार किया गया है। और दी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात यह है कि दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है, यानी कि इसे जो तैयार किया गया है वो फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। और दी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको दी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। ये दो प्रोडक्ट अभी मार्केट में आए हैं, मार्केट में इन है जनाब, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बता दे चलें कि ये किस तरह की क्रीम है, इसे आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताएं तो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक ऐसी ब्यूटी क्रीम है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो सेंसिटिव स्किन होती है उसे भी रिपेयर कर देती है। अक्सर औकात हम इस चीज को लेकर भी बड़ा परेशान हो जाते हैं कि हमारी अगर स्किन सेंसिटिव हो तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर जो ना हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारी सेंसिटिव स्किन कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर पाती है। तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में इन हो चुकी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को डीपली क्लीन करती हैं, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती हैं और आपकी स्किन के अंदर तक जो है ना जाकर आपके चेहरे पर जितने मसाले हैं वो सारे खत्म कर देती हैं। तो अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, आपकी रंगत जो है वो सांवली हो चुकी है, चेहरे पर एक्ने प्रॉब्लम है, एक्ने के निशानात है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर ये प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्किन जो है वो गोरी भी हो जाएगी। मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर जनाब इस क्रीम को तैयार किया गया है। तो कोई टेंशन की कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, ऑल स्किन के लिए है जनाब। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन वाले लोग लगाएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, सारे लोग ही लगा सकते हैं। जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं बिल्कुल जी, आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसकी तो मैं क्या ही आप लोगों को बात बताऊं, ये इतना प्यारा फेस वॉश है ना, कैसे आप लगाते हैं तो आप लोगों को एक ऐसा एहसास होता है कि भाई आप कितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये जनाब इतनी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि भाई वाह वाह, अमीरन वाली फीलिंग अचानक स्टार्ट थी रही है। सो मुनासिब कीमतन में तमाम के मिलन पया डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। एंड डी स्किन फेस वॉश एक ऑयल हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थी हला है, जेको तमाजी स्किन के क्लीन कंदो आए, मॉइस्चराइज कंदो आए, एंड तमाजी स्किन के हाइड्रेट भी रखंदो आए। सो इतना सारा फायदा है बाबा, तमाम छोंता फायदो वठो, एंड तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो, डी स्किन फेस वॉश लगायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम आए, सुना कि तमाम राजे टाइम इस्तेमाल करना है, तमाजी अगर करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल ना है। सो बाबा तमाम के भी नंबर से राबतो करनो पवंदो, नंबर से राबतो करी तां पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन फेस वॉश एंड वाइट एशिया तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था। सो नंबर आ है 03-12-50-25-907 एंड बियो नंबर आ है 033-27-38-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-
0909 ही ॿ नंबर आहिनि. अगरि हिकिड़ो बंदि हूंदो त ॿियो खुलियलु हूंदो, तव्हां हिकु न त ॿिए ते तव्हां राबितो करे ॾिसो ऐं हिननि खे ॿुधायो त बाबा तव्हां कहिड़ी जॻह ते मौजूदु आहियो ऐं किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले, जीअं हू अवेलेबल कराए सघनि. सम्झो था? सो अवेलेबल करायो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते, तव्हांखे वठण में आसानी थिए, तव्हांजे आस पास जे माण्हुनि खे बि वठण में आसानी थिए ऐं हर तरफ़ सिर्फ़ चर्चा हुजनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश. वाकी बाबा कमाल जा प्रोडक्ट आहिनि. सो तव्हां ट्राए करे ॾिसो, पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो.

0: ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. बताइए कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं और कितने सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं. सालार खान कहते हैं बचपन बहुत अच्छा गुजरा, क्या बात है जी. और दीदार अली बिरोही कहते हैं अर्ज करता हूँ तेरे इश्क में मिलावट है इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं. ओके जी, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, वाह वाह वाह वाह वाह. अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम नोहरी भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं. अच्छा ऐसा तव्हां फेसबुक ते बुधी वठंदा कयो नी असांखे बाबा, फेसबुक ते असांजो आवाज क्लियर ईंदो आहे ईअं न. अच्छा दर्दे दिल कहती है बचपन में जब अम्मी जबरदस्ती स्कूल भेजती थी तो पड़ोसियों के घर की घंटी बजाते हुए जाते थे गुस्से में. अम्मी जो गुस्सो मना उन्हें मां कढंदा हो. सही सही सही सही. अच्छा किशोर भाई कहते हैं काम काज नहीं मैं सिर्फ काम करता हूँ, काज दर्जी पाणी कराईंदो आ. इहा बि ॻाल्हि आहे, बाक़ी मूं कॾहिं सोचो कोन हुयो. अब्दुल रहमान हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम तव्हां ॿुधो पिया लाडकाणी खां, तव्हांजो प्रोग्राम भलो आहे जी, थैंक यू सो मच. आबिद परियास्ती हमारे साथ, सो गुड शो, थैंक यू. अच्छा हिप्पी कहती है आरजे मेरी दोस्त आपके बारे में पूछ रही थी तो मैंने भी बताया आपके बारे में, उसको समझ नहीं आ रही थी कि प्रोग्राम में शामिल कैसे होना होता है. मैं बता के प्रोग्राम में कैसे शामिल होता, मैंने बताया कि प्रोग्राम में कैसे शामिल होना होता है. वैसे मेरी दोस्त भी आपका शो सुनती है, वो भी जल्द आपके प्रोग्राम में शामिल होगी. चलें जी, उनको भी मोस्ट वेलकम किया जाएगा और आप दोनों को बहुत शुक्रिया वेलकम के साथ.
1: नखरे कर दिए बलिए गल्ला समझा मैं तेरी अखियां दी लख शुक्र करा उस मालिक दे जिने दित्ती.
0: अब्दुल रहमान कहते कैसी है, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं. पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के बारे में जरा सोचिए. अनवर भाई कहते हैं टॉपिक नो टेंशन नो क्राई, नो बिजली के बिल का खौफ, ना जॉब की चिक चिक और ना ही जिंदगी में क्या करना है वाली वजूदी बहरान. पिज्जा का आखिरी स्लाइस छीन कर खा लो तो कोई कुछ नहीं बोलता, बस बोलेंगे बच्चा है खाने दो. 10 रुपए में बादशाह थी, जेब में 10 रुपए का नोट होगा और तुम्हारी वॉक ऐसी रहेगी जैसे पूरे मोहल्ले के CEO तुम ही हो. हाँ भाई, बात में वैसे दम तो था, ऐसा ही होता है. बचपन के दिन जो है ना वो बहुत कमाल के दिन थे. अगर किसी का बचपन अच्छा ना भी गुजरा हो ना, लेकिन फिर भी वो आज के टाइम में अपना बचपन याद करके ये जरूर बोलेगा कि हाय बचपन बचपन था.

ही प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो। बुदायो करो प्रोडक्ट लगायो पया। अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर बचपन वापस मिल जाए तो बहुत कुछ है। उनमें से एक चीज जून जुलाई की छुट्टियां जो हमेशा गांव में गुजरती थी, खुली फिजा, खुले मैदान और क्रिकेट खेलना। क्या बात है। अच्छा कहते हैं सॉन्ग प्ले करना शमन मिराली ही हसी जिंदगी ये गुजरी वही है हे हलायूं था बिल्कुल योगा। मूसा भाई कहते हैं अदी पकोड़ा खाओ कराची जा माँ वैसे कराची जा पकोड़ा कौन खाता है। सोता खाओ बाबा खाओ मुंह आसानी करे खाए जो सही है। गोलू भाई कहते हैं चवंदा आहिने सबर जो फल मिठो हुंदो आ पर मुखे अन्या ताई न मिलियो आ लगे तो हाँ बिल्कुल तमाजे नसीब में जूस हुंदो।

अंदाज कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो ना, जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, सॉन्ग सुना दो ब्रहवी। ओके, मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना लगाएंगे, ठीक है।

अच्छा ऐसा कहते पश्तो में माई प्रोग्राम थी करे सब दुआ कर ला करे उनजी लाइट वने हली तो आवाज सही छे छा खबर उहा वने तो मता बी माई उनजी मथा अची वने ये भी थी सके तो बाबा प्रॉब्लम जे को सो उन जो हलियो ना है तो लाइट हली वने उनन वट सोलर हुंदो जनरेटर भी हुंदे ने सो या टेंशन न कयो असा वांगे अमीर हुंदा उहे भी बाबा पैकेज अथन तरी तो कमेंट कन था ना बिना पैकेज जे कमेंट थिंदो अच्छा भला बुधायो तो सही मुखे अच्छा मोहसिन आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम मोहसिन अली बिरोही फ्रॉम मोर मीरो खान चौक लाड़काना से ओके जी ओके मोहसिन आपको वेलकम कहते हैं आमिर खान महेश्वर ही गोठ जकरिया महेश्वर वालेकुम अस्सलाम मास्टर मंजूर जो गानो हलायो था बाबा हलायो था वेओ तो सही साथ पटियो अच्छा सही गानो अनवर भाई कहते हैं घर के काम चल रहे ना इसीलिए बिजी रहता हूँ आज काम का आखिरी दिन है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा मतलब एक काम है ना यानी हमने अपने घर पर थोड़ा सा काम करवाया मतलब थोड़ा सा उसमें इतने दिन लग गए ना इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं अब ये दुआ करती हूँ अल्लाह करे ऐसा करे मजदूर जो मुंह न ॾिसो ॾाढी घी लॻंदा आहिनि तो बि उन्हनि माण्हुनि खे शाबाश जेके स्टार्टिंग खां वठी घर ठाराइनि था अगली तव्हांजे सबर खे सलाम आहे

अच्छा मोहम्मद वारिस डूणी जो है वालेकुम अस्सलाम तव्हांजो प्रोग्राम कहिड़े वक़्त हलंदो आहे प्रोग्राम जा टॉपिक छा आहे अच्छा प्रोग्राम जेको आहे उहो डेली हलंदो आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं जुमो बस असांजी मोकल हूंदो आहे बाक़ी असांजो प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड आहे सो तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट ऐं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में ॿुधायो वेंदो आहे सो थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो ओके जी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ऐं ॿुधायो बाबा केरु केरु किथां किथां असां सां गॾु मौजूदु आहे कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो आहे ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती किथे पहुचाई अथव ॿुधायो त जीअं ख़बर पवे हुन खां अलावा टाइम थियो बाबा हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं तव्हां कॾहिं न वञो हिते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और ख़ूबसूरत हो जाइए

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

योगी जी ते पैनल ते केंजो खाली मैसेज मिलियो आए मुखी अगर न पढ़ा ते समझी वंजो यो ओ यो मैसेज मु जो या समझो दा और हमारे साथ रसूलाबाद का आबिद हुसैन शंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम टॉपिक मां अमर जी झोली मां ओके जी तव्हां जे ॾींहं जी शुरूआत अमर जे झोली सां थिए हा ओके ओके ॾाढो भलो तव्हां मैसेज कयो आहे अॻिते थोरी ॻाल्हि थोरी सम्झ में न आई और हुन खां अलावा तव्हां ॿियो मैसेज कयो आहे बचपन में मूं ट्रैक्टर जी स्पीकर ते जेको परे खां पहिरियों गानो ॿुधंदो हो जलाल जी आवाज़ में उहो ॿुधंदुसि वाह वाह वाह वाह मकसूद मला कहते हैं जवाब है आई एम सॉरी मैं अपने बचपन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत लड़ाइयां की हैं अगर गया वापस तो वो लड़के मुझे छोड़ेंगे नहीं एड़ा कम कया बचपन में ताकि अन्या बहुत होते अजा सजाद अली जमाली है नवाब शाह से सॉन्ग प्ले करना ममताज मलिक भा मैं कोशिश क्या थी न तो पंजी बजे वाली प्रोग्रामों में बुद्धि बैठना

क्या बात है, बहुत ही हसीन सा गाना सुना। एक और हसीन सा गाना हमारे लिस्ट में है, तो आइए जरा इस गाने को भी सुन लेते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं White Ash and D-Skin Beauty Show, sponsored by White Ash Beauty Products and D-Skin Beauty Products। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताइए।

0: अच्छा एसके हमें सुन रहे हैं मोरो से, आपने हमें ज्वाइन किया है और आपके साथ हैं जी मानिक अबड़ो, सदाम अबड़ो, दिलबर और उसके बाद मैसेज थोड़ा इधर उधर हो गया है आपका, तो थैंक यू सो मच, आप सब भाइयों को वेलकम कहते हैं। अच्छा गो टू गुलाब लगारी खां, साबिर लगारी हमारे साथ है, सुल्तान लगारी, रिजवान लगारी, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, कहते शो नाइस है, प्लीज प्ले सूर्या सुमरो, मैं कोशिश करती हूँ भाई आपका गाना भी लगाएंगे। और जागजानी चाचू हमारे साथ है, कहते हैं प्लीज प्ले
1: यार मसो।
0: ओके आई अंकल तुम्हारा गानो डेडिकेट कयो आहे अजरा खुसो जे नाले सजा जमाली, कहते नवाबशाह से सॉन्ग प्ले करें, ममताज मलाई हाजिर हाजिर भाई।

ओके जनाब, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जिनका आप इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको बताए जाते हैं जो आपकी खूबसूरती में ऐसा होता है कि जल्दी में आपको गोरा बना देते हैं लेकिन बाद में उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपके स्किन पर आ जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है और हाँ डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है। बस सो तमाम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था बाबा कोई भी अड़ो नाए तो तमाम जी स्किन खराब थी या कोई अड़ो मसलो अच्छी वेदो तमाम सफा बेफिक्र थी करे लगाए सको था। अच्छा हैप्पी कहती हैं आरजे आपका बचपन कैसा गुजरा, अच्छा था या बुरा? मेरा बचपन बस ठीक ठाक ही था, ना बुरा था ना अच्छा था। लेकिन देखा जाए तो मैं अपने कॉलेज के डेज को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा मेरा पूरा जो बचपन था वो जरा मैं इंट्रोवर्ट टाइप की बंदी हूँ। मैं ज्यादातर लोगों में जो है ना वो मिलकर बैठ नहीं सकती, मुझे थोड़ा सा फोबिया है ऐसा समझ ले। तो कॉलेज के टाइम में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया लोगों को फेस करने का, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए तो ऐसा वाला सीन है। कॉलेज टाइम मेरा ऐसा समझ ले लाइफ का बेस्ट टाइम था।

गाना मैं जब भी सुनती हूँ तो पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत अच्छा एक ये गाना है और उन खां अलावा ही गानो सभी जो फेवरेट हूँ मुख्य तो ये लगो है। अच्छा ये हमारे साथ है हमदुल्ला मलाखेल, कहते रोजाना ऐसी कोई एक नेकी जरूर किया करें जिसका गवाह बस आपका रब हो, क्या बात है। और अनवर भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। हमदुल्ला मलाखेल आप हमें कोयटा से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और अली मुर्तजा लिखते हैं कि हमसे मत उलझो कि अब हम सरा पाए सवाल भी हैं और हाजिर जवाब भी हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ओके जी, अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेन से, थैंक यू वेरी मच। एस एन अली बुक्टी हमें सुन रहे हैं लाड़काना से, थैंक यू। दीदार अली ब्रोही आप हमारे साथ साथ हैं। हजार भाई कहते अदी थी सगे तो ही सॉन्ग लगाए जो यो गानो, अगर हिन प्रोग्राम में ना ले तो असं पंजे बजे वाले प्रोग्राम में बुधूं था, ठीक है। अच्छा ममताज तुम्हें शायरी लिखी है तो थैंक यू, थैंक यू। दीदार अली ब्रोही भा तव मोहबित प्रोग्राम बुध पाया। अख्तियार अली सिंधी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। रमजान भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई, कैसे हैं। बख्त अली सियाल भाई हेलो। वासफ भाई कहते अदी सिद्धो बिल्कुल नंढपिण भले।

हुई हाणे याद थी अचे जॾहिं असां सभु ॻोठ जा ॿार गॾु थी मिटी ते रांदि खेॾंदा हुआसीं जॾहिं रांदि बस कंदा हुआसीं हिक ॿिए खे मिटी जा बुक भरे हणंदा हुआसीं अनवर भाउ कोई बात नहीं आप भी हमेशा खुश रहें अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हैं बाजी तांकी खबर आ मां एक बदक वठी आई आया बदक छो वठी आया हो रीजन चाहे ना जी पोया लुबी कहती सिडो दो घंटा गुजरी वया पर पता ही कौन चला हा बाबा दिसो ब घंटा ये गुजरी ना तांकी खबर ही कौन पड़ी एमन सारी कहते हैं हल काश बचपन वापस मिले आम असां त फर्जी करे सघूं था हमने भी बड़ी डोर बेल्स दोपहर में लोगों की बजाई चॉकलेट्स के रेपर में पत्थर डाल के दिए हम भी ऐसा करते थे किशोर भाई कहते तू पहिरियों इंसान आहे न मतलबु मां चवां थी बचपन त मुंहिंजो ठीकु ठाकु गुज़रियो अहिड़ी का बचपन जी ॻाल्हि मूंखे न आहे यादि त मां चवां त हा भई पर मां मतलबु चवंदमि त मुंहिंजो जेको कॉलेज वारो टाइम हुओ उहो इलाही बहितर हुयो मां इंट्रोवर्ट हुयमि न मतलबु मुंहिंजा खोड़ फ्रेंड न हुया फ्रेंड्स न हुया मां खेॾंदी न हुयमि सो हिन जे करे काहिड़ी चीज़ आहे न बचपन जी जेका मां चवां इंट्रोवर्ट माण्हुनि जो बि अलॻि ई लेवल हूंदो अथव सो बिल्कुल प्रोग्राम जेको आहे उहो ख़तमु थियण ते पहुतो आहे इनफैक्ट ख़तमु थी चुको आहे सो तव्हां खां मोकल वठूं था वरी मिलूं था 5 बजे वारे प्रोग्राम में सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी पंहिंजा फीडबैक रहिजी विया गाना रहिजी विया आहिनि सभिनी खां माज़रत कयूं था सो मोकिलाणी नाहे बाबू सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: It's 3 p.m. This line check is...
1: ...the allergy... ...lihe mufeed hai.
2: Fakiri...
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
4: आन है. एक बखरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरा है वो कह रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा. ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता.
5: वजीर आजम के सलाहकार राणा सनाउला जो पीपल्स पार्टी ते वार शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के मुल्क टोड़े वजीर आजम थियण जो तानो ॾेई छॾियो. घरू वजीर मोहसिन नकवी ते भी तनकीद. मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सनाउला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ के चवंदा त सनई धांधली करे वजीर आजम थियो आहे त पोइ हिते ही ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो. वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अवां फारम 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फारम जा आहिनि. ज़रदारी साहब जो ॿियो फर्ज़ंद चई रहियो आहे त सिस्टम ख़राब थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे. इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे. नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ ऐं मरियम नवाज़ खे धांधली करे खटरायो वियो. खैरात में मिलियल सीटनि वारा पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि. सिंध जे सूबाई वज़ीर सैद गनी चयो आहे त बंगलादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खे कहिड़े कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश थाने वारे केस में फाही ॾिए हा. सूबा ठाहिण जो इख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहिनि. सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा नओं सूबो नथा चाहिनि. मोहसिन नकवी भले जेको बि चवे संदसि ॻाल्हि मञण जा पाबंद आहियूं. पीपल्स पार्टी घटि में घटि करप्शन ऐं इख़्लाक़ियात ते लेक्चर न ॾे. मरियम नवाज़ सूबे में तालीम जो बजट वधायो आहे. छा पीपल्स पार्टी सिंध में तालीम जे बजट वधाई आहे? पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जे पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद. प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराचीअ जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि. शहर जा ग्रीन बैलेट ख़तम थी चुका आहिनि. सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे. सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि. मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करण बदिरां मरियम नवाज़ जेतिरो कम त करे ॾेखारियो. नवां सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहे. पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे. हिकु वफ़ाक ऐं 4 सूबनि वारो सिस्टम सबबि वसीले घटिजी विया आहिनि. MQM अॻवान ऐं वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि. बद इंतिज़ामी सबबि मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़ौज खे ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो. अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि. ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था. काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआदे लाइ मिनतूं कंदो. हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको. ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा. ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो. ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ही चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअणु घुरिजे. ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे. इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूदु आहे. ओमान वेझो आपना हरमुज़ में आयल टैंकर ते हमिलो. इंजण खे नुक़सान पहुचण बाद बहिरी टैंकर सफ़र रोके छॾियो. बरतानवी मेरी टाइम हमले जी तसदीक करे छॾी.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
2: शाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
7: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: It's 3:15 PM.
2: This time check is brought to you by
0: White Ash Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

चीन जे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी खिते जे अमुन लाए हकीकी भाईवार आहिन। पाक चीन दोस्ती बेहरहाल सूरत में एक साबित कदम मजबूत रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर GHQ में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जे 99 सालगिरह मल्हाई वही। चीनी सफीर समेत पाकिस्तान जे

0: आर भुट्टो खे मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो तानो ॾेई छॾियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ते बि तनक़ीद। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ़ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे त पोइ हिते ही ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अवां फारम 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फारम जा आहिनि। ज़रदारी साहब जो ॿियो फर्ज़ंद चई रहियो आहे त सिस्टम ख़राब थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेन सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे।
1: Your face now speaks 10 languages. Your dog can do pot.
0: शरीफ, शहबाज शरीफ ऐं मरियम नवाज़ खे धांधली करे खटरायो वियो। ख़ैरात में मिलियल सीटनि वारा पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। सिंध जे सूबाई वज़ीर सैद गनी चयो आहे त बंगलादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खे कहिड़े कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश थाने वारे केस में फाही ॾिए हा। सूबा ठाहिण जो इख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहिनि। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा नओं सूबो नथा चाहिनि। मोहसिन नक़वी भले जेको बि चवे संदसि ॻाल्हि मञण जा पाबंद आहियूं। पीपल्स पार्टी घटि में घटि करप्शन ऐं इख़्लाक़ियात ते लेक्चर तालीम जे बजट वधाई आहे। पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जे पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराचीअ जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शहर जा ग्रीन बैलेट ख़तम थी चुका आहिनि। सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे। सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करण बदिरां मरियम नवाज़ जेतिरो कम त करे ॾेखारियो। नवां सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहे। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं चार सूबनि वारो सिस्टम सबबि वसीले घटिजी विया आहिनि। एम क्यू एम अॻवान ऐं वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बद इंतिज़ामी सबबि मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज खे ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआदे लाइ मिनतूं कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ही चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजियुनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअणु घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे। इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूदु आहे। ओमान वेझो आपना हरमुज़ में आयल टैंकर ते हमलो। इंजण खे नुक़सान पहुचण बाद बहरी टैंकर सफ़र रोके छॾियो। बरतानवी मेरी टाइम हमले जी तसदीक करे छॾी। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम जी हुकूमत ते सख़्त तनक़ीद। 7 अगस्त ते समूरे मुल्क में एहतजाज जो ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज़ नईम चयो त हुकूमत रोज़ पेट्रोल महांगो करे अवाम जो कतलेआम करे रही आहे। बिजली समेत खाद खुराक जूं शयूं बि महांगियूं आहिनि। 7 अगस्त ते एहतजाज कयो वेंदो। लाड़काणे वेझो ॿिनि भाइरनि समेत टे नींगर पाणीअ जे खॾ में ॿुॾी फोत। ॻोठ में पेर तिरकण सबबि झांगारा में 5 सालनि जो मोहम्मद हसीब, 6 सालनि जो सईद ऐं संदसि भाउ 3 सालनि जो रिज़वान कलोड़ो पेर तिरकण सबबि पाणी जे खॾ में किरी ॿुॾी फोत थी विया। वारसनि मूजिबि नींगर रोंबे ते वयल माण्हुनि खे मानी ॾेई वापसि ॻोठ अची रहिया हुआ त रस्ते में पेर तिरकण सबबि पाणीअ जे खॾ में किरी फोत थिया आहिनि। टिनि नींगरनि जा लाश घर पहुचण ते अमड़ियुनि खे दौरा। ॻोठ में सोग छायल आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुश खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03-208-00-1800-003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
8: 03013992836।
9: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाक चीन दोस्ती आसपाया लाइन हर वक्त पूरी लहंदड़ है। पाक चीन फौज भी इलाकाई अपनाए गडियल वफादन के तहफुज लाइ हकीकी भाईवार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो 99वीं सालगिरह वारी तकरीब का खिताब। फील्ड मार्शल पाक चीन दोस्ती मुनफरद आसमायल है। इलाकई आलमी चैलेंजेस बावजूद मजबूत रही है। तकरीब का खिताब कदे चीनी सफीर दहशतगर्द के खिलाफ वेड में पाक फौज की कुर्बानियों की सारा कदे पाकिस्तान से भाईवारी के मजबूत किया। तकरीब दौरान चीन जी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह जो केक काटे हुए। तकरीब में टिन्हीं हथियारबंद फौजन के सीनियर ऑफिसर भी शिरकत कई।
2: ये बात करेंगे कि वो पहली दफा दादली से वजीर आजम बने थे तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
1: वज़ीर आज़म के सलाहकार राणा सदावला जो पीपल्स पार्टी के वार शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो तानो ॾेई छॾियो। करू वज़ीर मोहसिन नक़वी ते विधन खे मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सदावला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे त पोइ हिते ही ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अवां फॉर्म 47 जो सॾींदा आहियो त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फॉर्म जा आहिनि। सरदारी साहब जो ॿियो फर्ज़ंद चई रहियो आहे त सिस्टम खत्म थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो कयनि सिस्टम ख़राब थियण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ऐं मरियम नवाज खे धांधली करे कटरायो वियो। ख़ैरात ते मिलियल सीटनि वारा बि पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। सिंध जे सूबाई वज़ीर सईद ग़नी चयो आहे त बंगलादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खेसि कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश थाने वारे केस में फाही ॾे हा। सूबा ठाहिण जो अख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहे। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाईंदा नओं सूबो नथा चाहिनि। मोहसिन नक़वी भली जेको चवे संदसि ॻाल्हि ॿुधण जा पाबंद न आहिनि। पीपल्स पार्टी घट में घट करप्शन इख़लाक़ियात ते त लेक्चर न ॾे। मरियम नवाज़ सूबे में तालीम जो बजट वधायो आहे। छा पीपल्स पार्टी सिंध में तालीम जी बजट वधाई आहे? पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जी पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराची जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शहर जा ग्रीन बेल्ट ख़त्म थी चुका आहिनि। सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे। सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करण बदिरां मरियम नवाज़ एतिरो कम करे ॾेखारियो। नवा सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहिनि। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं 4 सूबनि वारे सिस्टम सबबि वसीला घटिजी विया आहिनि। एम के मगवाड़ ऐं वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बदइंतिज़ामी सबबि बि मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज के ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमरीका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो पाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआदे लाइ मिंटू कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमरीका ऐं स्ट्राइक खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई चयो आहे त अमरीका ऐं संदसि भाड़ी जे फ़ौजियुनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी हुअणु घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे, इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूदु आहे।

0: वज़ीर-ए-आज़म पारां तेल ऐं गैस जे शोबे में नाजाइज़ मुनाफ़ो रोकण लाइ जल्द डिजिटल निज़ाम आणण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर-ए-आज़म सां आलमी बैंक जे कंट्री डायरेक्टर जी मुलाकात। मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। शहबाज शरीफ चयो त तेल ऐं गैस जे शोबे में शफ़ाफ़ियत यकीनी बणाइण जूं हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम जी हुकूमत ते सख़्त तनक़ीद। 7 अगस्त ते समूरे मुल्क में एहतजाज जो ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज़ नईम चयो त हुकूमत रोज़ पेट्रोल महांगो करे अवाम जो कतलाम करे रही आहे। बिजली समेत खाद खुराक जूं शयूं बि महांगियूं आहिनि। 7 अगस्त ते एहतजाज कयो वेंदो। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन ऐं पंहिंजा नवाज़ी ख़िलाफ़ उमीदवारनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज जारी। पीटीआई सिंध जे सदर हलीम आदिल शेख ऐं क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह सतीफ़ अली जो एहतजाज जी कैंप आमद। शागिर्दनि जी जदोजहद में साथ ॾियण जी ख़ातिरी अयाज़ सतीफ़ अली जो चयो आहे त कमीशन नीलाम घर बणिजी वई आहे जिते नौकरियुनि जो सौदो थिए थो। नवनि सूबनि बाबति बयान मुज़म्मत जोॻो आहे। सिंध हिकु हुई, हिकु आहे ऐं सदाई हिकु ई रहंदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप 2.5, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-180-003।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385699।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

जी वया दहशतगर्दन संवड़े पाक फौज जो एक बहादुर मेजर भी शहीद थी वो। ISPR मूजिब उत्तर वजिस्तान में कार्रवाई कंदे पंज भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। शदीद फायरिंग जी डेवट में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद थी वयो। बलोचिस्तान के जिले नौशकी में भी ऑपरेशन दौरान अपघाती बम्बार समेत 7 भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दन के मारियो वयो। मारजी वे खारजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून लागू कंदड़ इदारन ए शहरन खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस हुआ, जिन के कब्जे में हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वियो आहे।

0: पाक चीन दोस्ती आज़मायल ऐं हर वक़्त ते पूरी लहंदड़ आहे। पाक चीन फ़ौज बि इलाक़ाई अमुन ऐं गॾियल मफ़ादनि जी तहफ़ुज़ लाइ हक़ीक़ी भाईवार आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जी 99वीं सालगिरह वारी तक़रीब खे ख़िताब। फील्ड मार्शल चयो त पाक चीन दोस्ती मुनफ़रद ऐं आज़मायल आहे, इलाक़ाई ऐं आलमी चैलेंजिस बावजूद मज़बूत रही आहे। तकरीब के खिताब कंदे चीनी सफीर दहशतगर्दी खिलाफ वेड़ में पाक फौज के कुर्बानन की साराह कंदे चयो त पाकिस्तान से भाईवारी के वधीक मजबूत कयो वेंदो। तकरीब दौरान चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह जो केक भी काटो वो। तकरीब में टिन्ही हथियारबंद फौजन के सीनियर ऑफिसर भी शिरकत कई।
1: ये बात करेंगे कि वो पहली दफा धांधली से वजीर आजम बने थे, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के? जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
0: वजीर आजम के सलाहकार राणा सरनावला जो पीपुल्स पार्टी ते वार। शहीद जुल्फकार भुट्टो मथा मुल्क टोड़े वजीर आजम थियण जो भी इल्ज़ाम लगाए छो। घरू वजीर मोहसन नकवी ते भी तनकीद। मुजफ्फराबाद में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सरनावला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज शरीफ के चवंदा त सदाई धांधली करे वजीर आजम थियो आहे, त पोइ हिते हीअ ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वजीर आजम थियो हो। वजीर आजम के वॉन्टन के अवां फॉर्म 47 जो सदींदा त बुधायो सदर के मिलल वॉन्ट कहड़े फॉर्म जा आहिन। जरदारी साहब जो बियो फर्जन चई रहयो आहे त सिस्टम खत्म थी चुको आहे, अगते न वधी रहयो आहे। इक्तदार जा मजा वठण बाद ओचतो खेन सिस्टम खराब लगो आहे, जेका अजीब गाल आहे। पीपुल्स पार्टी सिंध वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी खां उहिदो छॾण जो मुतालबो करे छॾियो। निसार अहमद खोड़ो चयो आहे त लागापियल सूबाई असेंबली में ठहराउ मंज़ूर थियण ताईं नओं सूबो नथो ठही सघे। नओं सूबो ठाहिणो आहे त पंजाब में ठाहियो वञे, जिते माज़ीअ में ठहराउ मंज़ूर कयो वियो। ग़ैर आइनी ॻाल्हियूं कंदड़ माण्हू क़ौम जा ॾोहारी तसवर थींदा। फ़ौज सियासत खां लातालुकी जो बयानु ॾिनो। घरू वज़ीर फ़ौज खे बदनाम पियो करे। निज़ाम कमज़ोर थियण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ घरू वज़ीर खे हुकूमत में न रहणु घुरिजे। हाइब्रिड सिस्टम जी तारीफ़ कंदड़ पार्लियामेंट ऐं ऐवान में छो वेठो आहे? सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो त नवाज़ शरीफ़, शहबाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ खे धांधली करे खटरायो वियो। ख़ैरात में मिलियल सीटनि वारा बि पीपुल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। बंग्लादेश साने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया केस कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंग्लादेश साने वारे केस में फाही ॾेई छॾे हा। सूबा ठाहिण जो अख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहे। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंहिं बि सूरत में नओं सूबो नथा चाहिनि। पीपुल्स पार्टी घटि में घटि करप्शन ऐं इख़्लाकियात ते त लेक्चर न ॾे। मरियम नवाज़ सूबे में तालीम जो बजेट वधायो आहे। छा पीपुल्स पार्टी सिंध में तालीम जी बजेट वधाई आहे? पंजाब के सूबाई वजीरन की पीपुल्स पार्टी ते सख्त तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब के वजीरन चयो त कराची जा शहरी पानी लाए परेशान आहिन। शहर जा ग्रीन बेल्ट खत्म थी चुका। सेहत जो सिंध में खराब हाल आहे। सिंध जो
2: योर फेस नाउ स्पीक्स।
0: नवा सूबा असांजी ख्वाहिश न पर पाकिस्तान की मजबूरी आहिन। पाकिस्तान में मसलन जो तूफान आहे। एक वफाक ए चार सूबन वाले सिस्टम सब वसीला घटी वया। एम क्यू एम अगवान वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल है तो महरूमिन सबब मानू रियासत खिलाफ थी रहा है। बद इंतजामी सबब भी मुल्क में मसला वधी रहा है।
3: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-57-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो 0301
1: खुशखबरी के झड़ने से अब फिक्र छोड़िए। शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320100003

अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी।

0: और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न बदन मर्दन औरतन में वजन जो न बदन उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-96-8051।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: भाई वारा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें सालगिरह वाले तकरीब के खिताब फील्ड मार्शल चौधरी पाक चीन दोस्ती मुनफरद आजमायल है इलाकई आलमी चैलेंजेस बावजूद मजबूत रही है। तकरीब के खिताब कंदे चीनी सफीर दहशतगर्दी खिलाफ वेड़ में पाक फौज कुर्बानन की सराह कंदे तो पाकिस्तान से भाईवारी के मजबूत किया वो। तकरीब दौरान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वें सालगिरह जो केक भी काटो वो। तकरीब में टिनी हथियारबंद फौजन के सीनियर ऑफिसरन भी शिरकत कई।
2: ये बात करेंगे कि वो पहली दफा धांधली से वजीर आजम बने थे तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है ये चल नहीं सकता।
3: वज़ीर आज़म के सलाहकार राणा सनाउल्लाह जो पीपल्स पार्टी के वार शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मथा मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो इल्ज़ाम भी लगाए छो। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी से भी तनकीद मुजफ़राबाद में चूंड जलसे के खिताब कदे राणा सनाउल्लाह जहां नवाज शरीफ के चवंदा तो सदाई धांधली कर वज़ीर आज़म थो है तो इतने ही गाल भी थी है को मुल्क टोड़े पे भेरो वज़ीर आज़म थो हो। वज़ीर आज़म के वोटन के अव फॉर्म 47 जो सदींदा त बुधायो सदर के मिलियल वोट कड़े फॉर्म जहा है। सरदारी साहब जो बो फर्जन चई रो है त सिस्टम खत्म थी चुको है अगते न वधी रो है इक्तदार जा मजा वठण बाद ओचतो खेन सिस्टम खराब लगो है जका अजीब गाल है।
1: पीपल्स पार्टी सिंध वफाकी घरू वजीर मोहसिन नक़वी का उहदो छड़न जो मुतालबो करे छड़ियो। निसार खोड़ो चयो है त लागा

0: कल सूबाई असेंबली में ठहराव मंजूर थियण ताईं नओं सूबो नथो ठही सघे। नओं सूबो ठाहिणो आहे त पहिरीं पंजाब में ठाहियो, जिते माज़ीअ में ठहराव मंज़ूर कयो वियो। गैर आइनी ॻाल्हियूं कंदड़ माण्हू क़ौम जा ॾोहारी तसवर थींदा। फ़ौज सियासत खां लातालुकी जो बयान ॾिनो। घरू वज़ीर फ़ौज खे बदनाम पियो करे। निज़ाम कमज़ोर थियण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ घरू वज़ीर खे हुकूमत में न रहणु घुर्जे। हाइब्रिड सिस्टम जी तारीफ़ कंदड़ पार्लियामेंट ऐं ऐवान में छो वेठो आहे। सूबाई वज़ीर सईद गनी जो चवण हो त नवाज़ शरीफ, शाहबाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ खे दांधली करे खटरायो वियो। ख़ैरात में मिलियल सीटनि वारा बि पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। बंग्लादेश साने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खेसि कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंग्लादेश साने वारे केस में फाही ॾिए हा। सूबा ठाहिण जो अख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहे। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंहिं बि सूरत में नओं सूबो नथा चाहिनि।
1: पीपल्स पार्टी घटि में घटि करप्शन ऐं इख़लाकियात ते त लेक्चर न ॾे। मरियम नवाज़ सूबे में तालीम जो बजट वधायो आहे। छा पीपल्स पार्टी सिंध में तालीम जे बजट वधाई आहे? पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जी पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराची जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शहर जा ग्रीन बेल्ट ख़त्म थी चुका आहिनि। सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे। सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करणु बदिरां मरियम नवाज़ जेतिरो कम त करे ॾेखारियो।
0: नवां सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहिनि। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं चार सूबनि वारे सिस्टम सभु वसीला घटिजी विया आहिनि। एम क्यू एम अॻवान ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बद इंतिज़ामी सबबि बि मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि।
2: नकवी साहब, आप साफ भी थे, साफत से आप आ गए निगरान वजीर आला, निगरान वजीर आला से आप आ गए क्रिकेट बोर्ड के सरबरा, फिर इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। आपकी स्पेशलिटी है या आप हॉकी के खिलाड़ी हैं और आप क्रिकेट वालों को मशवरा दे रहे हैं? आपको तो कंचे खेलने का पता नहीं है और आप वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मशवरा दे रहे हैं। आपको पता नहीं किसने फीड किया है। कोई बैरूनी मुल्क ताकतें तो आपके पीछे नहीं है जो आपको मिसगाइड कर रही है। पाकिस्तान को जरूरत है जोड़ने की। आप एक जगह आग जलाकर भाग के पर दूसरा नुक्कड़ पे आग लगाने को पहुंच रहे हैं। सिंध में भी आग लगाना क्यों चाहते हैं मुझे बताएं, किसकी ख्वाहिश होनी चाहिए? इस वक्त आप किसकी हिदायत पर ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अमन अमान को तबाह किया जाए, और क्यों कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब गुज़श्ता 6-7 हफ्तों में किससे मिले, किस किससे मुलाकात हुई है, फॉरेंसिक करवाए उनकी गुफ्तगू की, उनको ये हिदायत कहां से आई है कि पाकिस्तान में मजीद आग लगाई जाए? वो क्यों पाकिस्तान के लोगों को तबाह बर्बाद करने के पीछे लगे हुए?
1: मोहसिन नकवी, अवां वट अहलियत कहिड़ी आहे? कंहिंजी एजेंडा ते सिंध में बाहि लॻाइण चाहियो था? अवां खे केरु पियो इस्तेमाल करे? क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ वली जो जे नवनि सूबनि जी ॻाल्हि कंदड़ वफ़ाक़ी घरू वज़ीर ते छिती तनक़ीद। अयाज़ लतीफ़ चयो त हिन वक़्तु मुल्क खे जोड़ण जी ज़रूरत आहे, पर मोहसिन नकवी वरी बाहि लॻाइण जी ॻाल्हि पियो करे। जांच थियणु घुर्जे त कंहिंजी एजेंडा ते कम करे पियो। हुकमरान मुल्क नथा हलाए सघनि त घर हलिया वञनि। मुल्क में शफ़ाफ़ चूंडू थियणु घुर्जनि।
0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी मुस्लिम लीग नून जे सदर नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। मुल्क जी मजमूई सूरत हाल ते तफ़सीली ख़्यालनि जी ॾे वठि। वज़ीर आज़म आफ़ीस जी पधराई मूजिब रायवंड में थियल मुलाक़ात दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ऐं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि मौजूदु हुआ।
1: सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं। 12 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे पाक फ़ौज जो हिकु बहादुर मेजर बि शहीद। ISPR मूजिबि उत्तर वज़ीस्तान में कार्रवाई कंदे 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख़ारिजी दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। शदीद फायरिंग जी ॾेवठ में मेजर हाफ़िज़ अहसान इलाही शहीद थी वियो। बलूचिस्तान जे ज़िले नौशकी में ऑपरेशन दौरान आपघाती बमबार समेत 7 भारतीय हिमायत याफ़्ता दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल ख़ारिजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सिस, कानून लागू कंदड़ इदारनि ऐं बेगुनाह शहरियुनि ख़िलाफ़ दहशतगर्द कार्रवाइयुनि में मुलविस हुआ, जिन जे कब्ज़े मां हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज के ईरान से वन हमलन जो हुक्म दई छो। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिब अमरीका और इसराइल गडियल तौर से ईरान की तवानाई वाले हंधन के निशानों बनाने की रिथाबंदी कर रहा है। ईरान से हमला हलंदड़ हफ्ते कें भी वक्त थी सकन था। काबीना के खिताब कंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो तो अमरीका ईरान के खतरनाक तरीके से निशानों बनाई जै बाद ईरान गालन ए मुआहदे लाय मिन्थू कंदो।
1: हमलों करे भजन वारो दौर खत्म थी चुको। गलत अंदाजो लगाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भुगणा पवंदा। ईरानी फौज अमरीका ए इसराइल के खबरदार करे छो। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई चयो आहे त अमरीका ए संदस भाड़े की फौजन के अंदाजो थी वो हों त संदन सामान में कफन लाजमी शामिल होने घुर्जे। ईरानी फौज वट दिफाई सलाहियत भी है। इरादों भरपूर जवाब देने की सघ भी मौजूद है।

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति हेठि वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। मिठी मटियारी, मीरपुर ख़ास, टंडो अलियार ऐं टंडो मोहम्मद ख़ान में ककर वसी पिया। हैदराबाद, नंगर पारकर, हाला, भिटशाह, खैबर, उडेरोलाल ऐं कोटड़ी में बि वसकारो। ठठो, सिजावल, मीरपुर भठोरो, दड़ो, बदीन, मातली ऐं नवाबशाह में बि मींहुं पियो। टंडो आदम, मक़सूद रिंद, सांगड़, राजू खानाणी, सन, खडड़ो, खोरवा, मीरवा, गोरचाणी, नौकोट ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि वक़फ़े वक़फ़े सां बरसाति। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बि वसकारे खां पोइ मौसम ख़ुशगवार बणियल, गर्मीअ जो ज़ोर टुटी वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जापानी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
0: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
0: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।

0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: बिलावल भुट्टो जरदारी जो समाजी राबतन वाले वेबसाइट एक्स ते पैगाम बिलावल भुट्टो चयो त हिन वक्त पहिरीं तरजीह मौजूदा बोहरान जे खात्मे में मदद करण आहे। हर कीमती जान ज़ाया थियण हिकु क़ौमी सानियो आहे। अवाम खे तुर्त रिलीफ मिलणु घुर्जे। आज़ाद कश्मीर जी कानून साज़ असेंबली बि कमीशन जी मंज़ूरी ॾेई चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म सां बि मुशावरत कई वेंदी। इहो वफ़ाक़ी हुकूमत खां राय वठंदो। ख़बर पइजी वेंदी त तजवीज़ खे अॻिते वधाइण लाइ गॾियल बुनियाद मौजूदु आहे या न।
2: पाक चीन दोस्ती आज़माइल ऐं हर वक़्त ते पूरी लहंदड़ आहे। पाक चीन फ़ौज बि इलाक़ाई अमन ऐं गॾियल मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ हक़ीक़ी भाईवार आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जे 99वीं सालगिरह वारी तकनीकी ख़िताब। फील्ड मार्शल चयो त पाक चीन दोस्ती मुनफरिद ऐं आज़माइल आहे। इलाक़ाई ऐं आलमी चैलेंजेस बावजूद मज़बूत रही आहे। तकरीब खे ख़िताब कंदे चीनी सफ़ीर दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेड़ में पाक फ़ौज जी क़ुर्बानीनि जी साराह कंदे चयो त पाकिस्तान सां भाईवारी खे वधीक मज़बूत कयो वेंदो। तकरीब दौरान चीन जी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जी 99वीं सालगिरह जो केक काटियो वियो। तकरीब में चीनी हथियारबंद फ़ौजनि जे सीनियर आफ़िसरनि बि शिरकत कई।
3: और आप ये बात करेंगे कि वो पहली दफा धांधली से वजीर आजम बने थे तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
1: वज़ीर आज़म जी सलाहकार राणा सनाउल्लाह जो पीपल्स पार्टीअ ते वार। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मथां मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो बि इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वीअ ते बि सख़्त तनक़ीद। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउल्लाह चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ़ खे चवंदा त सदाई दांधली करे वज़ीर आज़म थियो त पोइ हिते हीअ ॻाल्हि बि थींदी त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वॉन्टनि खे अवां फॉर्म 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वॉन्ट कहिड़े फॉर्म जा आहिनि। ज़रदारी साहब जो ॿियो फर्ज़ चई रहियो आहे त सिस्टम ख़तम थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे।